समवेत स्वर में मातृवंदना सुनने के बाद लीजिए सुनिए शकुंतला श्रीवास्तव और साथियों की आवाजों में विद्या श्रीवास्तव की लिखी रचना।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है, 5:55 हुए हैं, प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: आइए आज कुछ चर्चा करते हैं नारियल में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों के संदर्भ में। राइनोसरस बिटिल नारियल के पेड़ का सबसे खतरनाक नाशी जीव है। ये बिटिल सड़े हुए जैविक तत्वों और कंपोस्ट आदि में पनपते हैं। वयस्क कीट अनखुली पत्तियों और स्पेथों में छेद कर देते हैं। प्रभावित पत्तियां जब पूरी तरह से खुलती हैं तो उनमें आड़े तिरछे कटे हुए निशान दिखते हैं। गंभीर स्थिति में पत्तियां खुलने पर ये टूट जाती हैं। इसका प्रबंधन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सड़े हुए जैविक कचरे का उचित निपटान करके नारियल के बागानों में साफ सफाई बनाए रखना राइनोसरस बिटिल को दूर रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। पेड़ के विकास बिंदु को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना हुक से राइनोसरस बिटिल को निकाला जा सकता है और फिर इस छिद्र में 3 ग्राम मैनकोजब 1 किलोग्राम बालू में मिलाकर भर देना चाहिए। मई सितंबर और दिसंबर के दौरान प्रति पेड़ सेविडॉल 8G व महीन बालू 200 ग्राम के मिश्रण बनाकर या फिर 45 दिनों के अंतराल पर 12 ग्राम नेफ्थलिन की गोलियों से सबसे भीतरी 2 से 3 पत्तियों के एक्सिलों को भरकर छोटे पेड़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है। राइनोसरस बिटिल के प्रजनन स्थलों पर समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 10 से 15 बिटिल की दर से बैकलोवायरस से संक्रमित राइनोसरस बिटिल छोड़कर जैविक नियंत्रण इन पर किया जा सकता है। राइनोल्योर फेरमोन ट्रैप का इस्तेमाल भी इसके नियंत्रण में हो सकता है। स्केल इंसेक्ट्स का प्रकोप पत्तियों की निचली सतह और गिरियों पर देखा जा सकता है। जब संक्रमण तीव्र हो जाता है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जिससे आगे चलकर पेड़ कमजोर हो जाता है। डाइमिथियोट 0.05% के छिड़काव से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। गर्मी के महीनों में मिलीबग्स बंद पत्तों, स्पेथों और गुच्छों को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रभावित पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अंत में सूख जाती है। इसके नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उचित कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। नारियल की फसल को चूहों से भी नुकसान पहुंचता है। चूहे नरम गिरियों को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे पैदावार को भारी नुकसान होता है। विशेष सुराखों वाली झड़ी हुई नर्म फल प्रभावित पेड़ों के तल पर देखे जा सकते हैं। नारियल के पेड़ में 2 मीटर की ऊंचाई पर तने के चारों ओर 40 सेंटीमीटर चौड़ा GI शीट लगाकर चूहों को पेड़ों पर चढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा जहरीली टिकियां और चूहेदानी से भी चूहों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नारियल में अनेक प्रकार के रोग लगते हैं। इनमें से कुछ घातक होते हैं तो कुछ पेड़ की क्षमता को धीरे धीरे कम करने लगते हैं, जिससे कि पैदावार में भारी कमी आती है। कली सड़न कवकीय रोगाणु द्वारा उत्पन्न एक घातक रोग है। यद्यपि ये सभी अवस्था के पेड़ों को प्रभावित करता है, किंतु छोटे पेड़ इस रोग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बाह्य तौर पर सबसे पहला लक्षण जो दिखता है वो है स्पिंडल के चारों ओर 1 या 2 नई पत्तियों का पीला पड़ना। स्पिंडल मुरझा जाते हैं और नीचे लटक जाते हैं। स्पिंडल की तली सड़ जाती है और हल्के से खींचने पर बाहर निकल जाती है। इससे दुर्गंध भी

0: चलती है। भीतरी पत्तियां भी एक एक करके पेड़ से गिरने लगती है और तने के शीर्ष पर निचले चक्र में केवल पुरानी व परिपक्व पत्तियां ही बची रहती हैं और अंततः पेड़ मर जाता है। यदि शुरुआती अवस्था में इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये रोग घातक हो सकता है। रोग प्रबंधन के लिए रोगग्रस्त पेड़ के आसपास के सभी स्वस्थ पेड़ों पर 1% बोड़ो मिश्रण का छिड़काव किया जाना चाहिए। वर्षा के मौसम में शीर्ष के 2 या 3 पत्तियों के एक्सिल में 2 से 3 ग्राम डाइथेनम 45 या एंडोफिल M45 वाला छिद्रदार पाउच रख देना भी इस रोग की रोकथाम में सहायक होता है। पत्ती मुरझान या पत्तियों पर भूरे धब्बे बनना भी नारियल को प्रभावित करता है। बाहरी चक्र की परिपक्व पत्तियों में इस रोग के लक्षण देखे जाते हैं। पुरानी प्रभावित पत्तियों को हटा देना और नए पत्तों पर 1% बोड़ो मिश्रण का छिड़काव इस रोग के प्रबंधन का उपाय है। फल का सड़ना या गिरी का गिरना एक प्रमुख रोग है जो कि फफूंद से उत्पन्न होता है, जो पौधों को तो नष्ट नहीं करता बल्कि पैदावार को काफी कम कर देता है। वर्षा ऋतु के दौरान अपरिपक्व फलों के सड़ने से इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये फल नीचे गिर जाते हैं। 2 से 5 महीने के फल प्रभावित हो सकते हैं। मानसून से पूर्व 1% बोड़ो मिश्रण या 0.5% फाइटोलेन का छिड़काव और इसके बाद 40 दिनों के अंतराल पर 1 या 2 छिड़काव इस रोग के प्रबंधन में मदद करता है। नीचे गिरे हुए फलों को एकत्रित कर जला देना चाहिए।
1: ये था एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं।

0: इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन तीन देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
2: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. Madhya Pradesh Cabinet has approved the Uniform Civil Code UCC Bill during a special meeting held at Jagdishpur, a historic town near Bhopal. Addressing a press conference, Chief Minister Mohan Yadav said that the UCC will provide equal opportunities and rights to all communities, and this law is a major step in that direction. He said the UCC Bill does not violate the fundamental rights of the citizens. The bill will now be tabled.

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार MV जॉली बॉय माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल मंगलवार 21 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान के लिए MV कैम्बल बे कल मंगलवार 21 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV भारत सीमा कार निकोबार की यात्रा पर कल मंगलवार 21 तारीख को दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और बुधवार 22 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। लिटिल अंडमान का निकोबार चौरा तरेसा कचाल और ननकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर MV कालीघाट गुरुवार 23 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और रविवार 26 तारीख को दोपहर 12 बजे कैम्बल बे से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। नालंदा जलयान ननकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल मंगलवार 21 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी गुरुवार 23 तारीख को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी बम्बो का शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी हडबे आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल मंगलवार 21 तारीख को स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए सवेरे 5:30 पर वापस आएगा।

एमवी हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल मंगलवार 21 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। श्रोताओं, ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जब रात अपनी मखमली चादर ओढ़ती है तब आसमान का सबसे खूबसूरत मेहमान चुपचाप अपनी चांदनी बिखेरने चला आता है। वही चांद जो कभी माँ की लोरी है, कभी किसी प्रेमी की आँखों में मुस्कुराता है, तो कभी किसी कवि की कल्पना बनकर कागज पर उतर आता है। सदियों से इंसान ने जिसे निहारा, जिसके लिए गीत और गजलें लिखे, तो आज की यह महफिल उसी दिलनशी मेहमान के नाम है और वो है चांद। दोस्तों, रिश्तों की सबसे सुंदर पहचान उनके साथ होने में होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व में समा जाने का एहसास है। जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी से पहचान पाता है और चांदनी चांद से अपना उजाला पाती है, उसी तरह सच्चे रिश्ते विश्वास, समर्पण, अपनापन और अटूट साथ से ही बनता है।

रुकता नहीं, बल्कि उसकी एक झलक पाने की चाह और बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही प्रेम में भी कभी कभी संकोच, दूरी या इंतजार होता है, लेकिन सच्ची भावना कभी धुंधली नहीं पड़ती। प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि छोटे छोटे एहसासों से व्यक्त होता है। तो इसी मोहक एहसास के साथ हम खो जाते हैं उस दुनिया में जहाँ चांद, बादल और प्रेम मिलकर एक ऐसी कहानी रचते हैं जो हर दिल को अपना सा लगती है।

दोस्तों कहते हैं कुछ लोगों की मौजूदगी जीवन में वैसे ही होती है जैसे अंधेरी रात में चांद की। उनके आने से केवल चेहरे पर ही नहीं बल्कि दिलों में भी उजाला उतर जाता है। जिस प्रकार चांद के निकलते ही रात का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, उसी प्रकार किसी प्रिय के आने से जीवन में प्रेम, उल्लास और नई ऊर्जा का संचार हो जाता है।

0: धनुष कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में भी चांद की शीतलता, उजाला और मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। अब मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए रंग और नए गीतों के साथ। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी शाहिना शमीम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 305वीं कड़ी।

अपने पुत्र प्रहस्त से नीति की बात तथा श्री राम से प्रीति करने का अनुरोध सुनकर रावण उसे झिड़क देता है। प्रहस्त को प्रतीति होती है कि मृत्यु के वशीभूत रोगी पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं होता। रावण लंका की चोटी पर निर्मित अपने रंग महल में किन्नरों के गान तथा अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाने चल देता है। उधर सुबेल पर्वत पर श्रीराम सुग्रीव की गोद में सिर रखे अपने प्रियजनों विभीषण हनुमान लक्ष्मण आदि से मंत्रणा कर रहे हैं। पूर्वी क्षितिज पर चंद्रमा उदित हो रहा है जिसकी शोभा से सभी मुग्ध हैं। अनंत आकाश पर बिखरे तारों से मानो रात्रि रूपी सुंदरी ने अपना श्रृंगार किया है।

0: श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 305वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और श्रीकांत पारगांवकर व संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए, स्वराज द्वीप में आइस प्लांट, अंडमान निकोबार के मत्स्य क्षेत्र को मिलेगी नई मजबूती पर समाचार वार्ता। लेखक और वाचक हैं चित्रकांत शर्मा।
1: अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक समुद्री संपदा, समृद्ध जैव विविधता और मत्स्य संसाधनों के लिए देश भर में विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ मत्स्य पालन केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन उद्योग का भी महत्वपूर्ण आधार है। मत्स्य अवसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम दूरगामी प्रभाव डालता है। इसी क्रम में मत्स्य विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने स्वराज द्वीप के गोविंद नगर में नवनिर्मित 5 मीट्रिक टन क्षमता वाले आइस प्लांट को मछुआरा समुदाय को समर्पित किया है। यह परियोजना मछलियों के संरक्षण, गुणवत्ता सुधार और मछुआरों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। आइस प्लांट का लोकार्पण अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने किया। स्वराज द्वीप की मत्स्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निर्मित इस संयंत्र में प्रतिदिन 55 किलोग्राम वजन वाले 120 बर्फ के ब्लॉक तैयार किए जा सकेंगे। इससे क्षेत्र के लगभग 250 मछुआरों और 80 से अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण बर्फ की समय पर उपलब्धता से मछलियों की ताजगी लंबे समय तक बनी रहेगी, कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी तथा मछलियों के सुरक्षित भंडारण और परिवहन की क्षमता बढ़ेगी। इसका लाभ स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ साथ द्वीपों में आने वाले पर्यटकों को भी मिलेगा, जिन्हें अधिक ताजा समुद्री खाद्य उपलब्ध हो सकेगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हाल के वर्षों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य पालन के लिए एक्सेस पास जारी करने तथा खुले समुद्र में व्यावसायिक ओपन सी केज कल्चर की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन पहलों से समुद्री संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित होगा और मछुआरों के लिए नए रोजगार एवं आय के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने मत्स्य विभाग द्वारा आवश्यक आधारभूत ढांचा विकसित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, इससे द्वीपों का मत्स्य क्षेत्र और अधिक सशक्त बनेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के सबसे समृद्ध समुद्री क्षेत्रों में गिना जाता है। द्वीप समूह के पास लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र उपलब्ध है, जो समुद्री मत्स्य संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र की मत्स्य क्षमता का अभी भी पूर्ण दोहन नहीं हो पाया है और वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन तथा आधुनिक अवसंरचना के माध्यम से उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। मत्स्य क्षेत्र में कोल्ड चेन अवसंरचना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मत्स्य प्रसंस्करण और विपणन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पकड़ने के तुरंत बाद मछलियों को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है। यही कारण है कि आइस प्लांट जैसी सुविधाएं मछुआरों की आय बढ़ाने और बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अंडमान निकोबार की एक और विशेषता यहाँ का उच्च समुद्री खाद्य उपभोग है, जो यहाँ के लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था में मत्स्य क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है। स्वराज द्वीप में स्थापित यह नया आइस प्लांट केवल एक आधारभूत सुविधा नहीं बल्कि स्थानीय मत्स्य

0: अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश है। यदि इसी प्रकार वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन, कोल्ड चेन नेटवर्क, प्रसंस्करण इकाइयों और बाजार संपर्क को मजबूत किया जाता रहा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश के समुद्री मत्स्य क्षेत्र में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह पहल न केवल मछुआरों की आय बढ़ाएगी बल्कि सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और समुद्री संसाधनों के संतुलित उपयोग के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करेगी। स्वराज द्वीप में स्थापित 5 मीट्रिक टन क्षमता वाला आइस प्लांट केवल एक आधारभूत सुविधा नहीं बल्कि अंडमान निकोबार के मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ और अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और मछुआरों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यदि भविष्य में ऐसी अवसंरचनाओं का विस्तार वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन, कोल्ड चेन नेटवर्क और आधुनिक विपणन सुविधाओं के साथ किया जाता है तो द्वीप समूह समुद्री मत्स्य क्षेत्र में अपनी अपार संभावनाओं को साकार करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका को नई मजबूती प्रदान कर सकेगा।
1: श्रोताओं, अभी आप स्वराज द्वीप में आइस प्लांट अंडमान निकोबार के मत्स्य क्षेत्र को मिलेगी नई मजबूती पर समाचार वार्ता सुन रहे थे। लेखक और वाचक थे चित्रकांत शर्मा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब पेश है वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे पिनाज मसानी और मोहम्मद रफी। 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर उल्हास कशालकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन होगा। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1331वीं कड़ी। एक ही कलाकार कार्यक्रम में 11:30 पर आनंद बख्शी के लिखे गीतों का आप लुत्फ उठा पाएंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में एक ही फिल्म के गीत आप सुनेंगे। साथ ही विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस पर चर्चा भी होगी। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे और फिल्मी गीत भी आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:10 पर मलयालम में समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम होगा आओ हिलमिल गाएं। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का आप आनंद ले पाएंगे 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन आउट कार्यक्रम आप सुनेंगे हेलो डियर फ्रेंड्स, और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो दोपहर बाद 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस और विश्व शतरंज दिवस पर चर्चा आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 4:30 पर फनकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। शाम 4:40 पर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। बहारों की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे 4:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6 बजे, जिसमें डॉक्टर भट्टाचार्य और अनुकूल विश्वास से बातचीत का विषय रहेगा पशुओं में कंधों के घाव के उपचार की नई तकनीक। पॉप मसाला कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे 6:30 पर। युवाणी के तहत संध्या 7 बजकर

30 मिनट पर पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा यादें, वह अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस और विश्व शतरंज दिवस पर चर्चा भी आप सुन सकेंगे। रात 8:15 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत और रात 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8 बजे संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक का कार्यक्रम और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23-2003 धारा 63-शतम् अनुवर्तिता अस्ति। अतः जन्तरमन्तर क्षेत्रं विहाय अस्मिन् क्षेत्रे 5 वा 5+ जनानां विरोधयात्राः, शोभायात्राः, प्रदर्शनानि, सभाः च कठोरतया निषिद्धाः सन्ति इति। दिल्ल्यारक्षकैः सर्वे नागरिकाः विधेः सम्मानं कुर्वन्तु, कस्यापि अनधिकृत सभायां, पदयात्रायां च भागं न गृह्णन्तु, सार्वजनिक शान्तिं, सुरक्षां च रक्षयितुं सहयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थितमस्ति। भोपालनगरस्य समीपे ऐतिहासिके जगदीशपुरे आयोजिते विशेषसभायां मध्यप्रदेशस्य मन्त्रिमण्डलेन यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इति विधेयकं स्वीकृतम्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् मुख्यमंत्री मोहन यादवः अवदत् यत् यूसीसी सर्वेभ्यः समुदायेभ्यः समानावश्यकान् अधिकारान् च प्रदातुं शक्नोति। सः अवदत् यत् यूसीसी विधेयकं नागरिकान् आधारभूत अधिकारान् न उल्लङ्घयति इति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेन देशः अतिरिक्त समये गतविजेता अर्जेंटीना देशं 1-0 इत्यंकेन पराजित्य 26-2000 फीफा विश्वकप विजेता अभवत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 89% और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.4 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:04 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:47। अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

श्रोताओं, आपको फिर से बता दें, सवेरे 7:15 पर देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का आप आनंद ले पाएंगे। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन को सुनिश्चित करने के लिए मछुआरों से समुद्री मत्स्य पालन विनियम और नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इंडिया ग्लोबल ट्रेड फेयर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान तथा मूल्यांकन के लिए आज से शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य मुद्दों पर रचनात्मक चर्चाओं में भागीदारी करने और संसद की निर्बाध कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह सभी राजनीतिक दलों से किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। दक्षिण अंडमान क्षेत्रीय मत्स्य पालन कार्यालय ने मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन को सुनिश्चित करने के लिए सभी मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मालिकों और संबंधित हितधारकों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री मत्स्य पालन विनियम 2003, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री मत्स्य पालन नियम 2004 और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। नियम के तहत 30 हॉर्स पावर या उससे अधिक की इंजन क्षमता वाली मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को तट से 6 समुद्री मील के दायरे में तथा खाड़ियों, चैनलों, मुहानों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में मछली पकड़ने की सख्त मनाही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री मत्स्य पालन संशोधन नियम 2025 के अनुसार ऐसी मशीनीकृत नौकाएं प्रादेशिक जल सीमा में केवल 6 से 12 समुद्री मील के क्षेत्र में ही मछली पकड़ सकती हैं। इसके लिए वे अनुमति प्राप्त उपकरणों का ही उपयोग कर सकते हैं। सामुदायिक विकास ब्लॉक डिगलीपुर की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत एक एकीकृत कृषि क्लस्टर की स्थापना की गई है। इस पहल के हिस्से के रूप में महिला किसानों और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के लिए उत्पादन, मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण और बाजार जुड़ाव के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए एक आजीविका सेवा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये प्रस्तावित आजीविका सेवा केंद्र स्वयं सहायता समूहों के लिए एक एकल खिड़की सहायता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। एकीकृत कृषि क्लस्टर पहल के हिस्से के रूप में गुणवत्तापूर्ण चूजों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने

पोल्ट्री आधारित आजीविका को बढ़ावा देने और एसएचजी सदस्यों के लिए आय के नए स्रोत बनाने के लिए एक पोल्ट्री हैचरी भी स्थापित की जाएगी। खेल एवं युवा मामले विभाग ने पर्यटन विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से द्वीपों में फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल आइलैंड मॉनसून साइकिलिंग टूर का आयोजन किया। ये साइकिलिंग टूर नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर कार्बाइन स्कोप जाकर सम्पन्न हुई। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगाथन ने इस साइकिलिंग टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर और मूल्यांकन शिविर। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय की ओर से पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये मेला 4 से 21 सितंबर तक साइंस सिटी एग्जीबिशन ग्राउंड कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। हस्तशिल्प और हथकरघा, कपड़ा और परिधान, होम फर्निशिंग, चमड़े के सामान, क्रॉकरी, प्रोसेस्ड फूड, हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, लाइफस्टाइल उत्पाद तथा फर्नीचर और इंटीरियर उत्पादों के निर्माण में लगे पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यम इस मेले में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी उद्यम खरीद और विपणन सहायता योजना के घटक के तहत निर्मित स्टॉल के किराए पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दिव्यांग और आकांक्षी जिला इकाइयों के लिए 100% सब्सिडी दी जाएगी। द्वीप समूह के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को पीएमएसएस योजना के दिशा निर्देशों के अधीन प्रति आयोजन प्रति उद्यम अधिकतम 80,000 रुपये तक की समग्र सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन और पीएमएस योजना के दिशा निर्देशों के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान तथा मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर आज, कल 24 और 25 जुलाई को विभिन्न क्लस्टरों में आयोजित किया जाएगा। शिविर में चिकित्सा अधिकारियों और एलिम्को की टीम बच्चों की स्वास्थ्य जांच करेगी। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और अभिभावकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन सिकंदराबाद ने कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र तथा शिक्षा निदेशालय के सहयोग से हाल ही में टैगोर कॉलेज में विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता मूल्यांकन और निदान विषय पर 2 दिवसीय ऑफलाइन CRE कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में द्वीप समूह के सरकारी और निजी स्कूलों के 50 से अधिक RCI पंजीकृत पेशेवरों, विशेष शिक्षकों और पुनर्वास पेशेवरों ने भाग लिया। इस अवसर पर CRC की निदेशक सुमिता मौल एस ने समावेशी शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए साक्ष्य आधारित प्रथाओं की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा निदेशालय के प्रभारी ज्ञानशील दुबे ने द्वीपों में विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सहायक आयुक्त सेटलमेंट कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए टैगोर राज्य शिक्षा महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त प्रियंका कुमारी ने एक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने में पौष अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण सत्र का संचालन पौष ट्रेनर रुबीना सिद्दीकी द्वारा किया गया। इस दौरान दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सहायक

आयुक्त और सहायक आयुक्त सेटलमेंट के कार्यालयों के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन को सुनिश्चित करने के लिए मछुआरों से समुद्री मत्स्य पालन विनियमन और नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान तथा मूल्यांकन के लिए आज से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी।

कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देश सिर्फ हमारी पहचान नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस मिट्टी का हर कण हमें गर्व से सिर ऊंचा रखना सिखाता है। इसकी हवा में आज़ादी की खुशबू और वीरों के बलिदान की कहानी बसती है। आओ अपने कर्मों से भारत का नाम और ऊंचा करें, क्योंकि देश की शान ही हमारी सबसे बड़ी शान है।

दोस्तों, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो देश के लिए जीते और जरूरत पड़ने पर हंसते हंसते बलिदान देते हैं। हमारी आज़ादी अनगिनत वीरों की कुर्बानियों का अमूल्य उपहार है और हर तिरंगा हमें उनके साहस और सम्मान का याद दिलाता है।

दोस्तों, भारत सिर्फ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान और हमारा अभिमान है। इसकी मिट्टी, इसकी संस्कृति और इसकी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आओ मिलकर इस गुलिस्तां की खूबसूरती और एकता को हमेशा बनाए रखें।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि खुद पर भरोसा बनाए रखो, रास्ते बनते जाएंगे, हर कदम पर नए हौसले मिलते जाएंगे। आज की मेहनत कल पहचान बनेगी, आज की मेहनत कल पहचान बनेगी, एक दिन तुम्हारी कहानी जरूर मिसाल बनेगी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में। इस सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना।

दोस्तों आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस है जो हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को चंद्रमा के बारे में जागरूक करना और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। ये दिन 20 जुलाई 1969 को इंसानों के पहली बार चंद्रमा पर उतरने की ऐतिहासिक घटना की याद भी दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई खोजों के महत्व को समझें तथा आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

दोस्तों आपको बता दें, आज एक और ख़ास दिन है। जी हाँ, विश्व शतरंज दिवस, जो हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शतरंज के खेल को बढ़ावा देना और लोगों में तार्किक सोच, धैर्य की क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। शतरंज एक ऐसा खेल है जो दिमाग को तेज करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित भी करता है। विश्व शतरंज दिवस हमें यह संदेश देता है कि शतरंज केवल मनोरंजन का खेल नहीं, बल्कि सीखने, सोचने और बेहतर निर्णय लेने का एक प्रभावी माध्यम भी है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है।

समीर का लिखा एवं शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया हुआ ये था हाउसफुल फिल्म का गाना। आवाजें थी तरुण अलीसा मेंडोसा और लॉय मेंडोसा की। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत पाठशाला फिल्म से, जिसे स्वर दिया है सलीम मर्चेंट ने, बोल व गीत है हनीफ शेख है।

दोस्तों, और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत गुमनाम फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की, गीतकार समीर व संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

मोनिका नाथ और उदित नारायण की आवाजों में अभी आपने गुमनाम फिल्म का ये गीत सुना, जिसे लिखा था समीर ने व संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। चलते चलते यही कहना चाहूंगी कि मंजिल पाने का जुनून होना चाहिए, दिल में जीत का सुकून होना चाहिए। मुश्किलें तो रास्ते में आते रहेंगी, बस हौसलों में दम होना चाहिए। इस प्रेरणादायक विचार के साथ अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त शवाना को इजाजत। गुड मॉर्निंग अंडमान।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा

0: का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन

0: अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली PV सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मानसून

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के हमारे फनकार हैं पिनाज मसानी और मोहम्मद रफ़ी। तो कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं पिनाज मसानी की आवाज़ में चंद गज़लें।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे फिनाज मसानी और मोहम्मद रफी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने सिलसिला फिल्म से लिया है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के। बोल जावेद अख्तर के हैं व धुन बनाई है शिव हरी ने।

आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में आइए सुनते हैं मंजिल मंजिल फिल्म का गाना, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने व संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: मुकेश की आवाज़ में अभी आपने कभी कभी फिल्म का ये गीत सुना, जिसे लिखा था साहिर ने व संगीत से सजाया था खय्याम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में गाने और भी हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा।

0: मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, आखिर मेरी भी कोई अहमियत है। लोग सोचते हैं कि मैं मच्छर के काटने से फैल जाता हूँ। अरे भाई, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है, मैं नहीं। कोई कहता है कि एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, कपड़े या तौलिया साझा करने से, या फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने पीने, उठने बैठने, पढ़ने काम करने से, बात करने से फैल जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे बारे में ठीक से तो जान लो, मैं इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: बच्चों, जवाब सही से लिखना, और हाँ, 10 नंबर सफाई के होंगे।
2: अच्छी तरह सफाई करने के लिए उतने ही नंबर।
3: जी हाँ, घर में और आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले इत्यादि को हर सप्ताह अच्छी तरह साफ करें। प्लास्टिक के कप, ग्लास और नारियल के खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, ताकि उसमें पानी जमा न हो। याद रखें, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है।
4: मच्छरों के काटने से बचें, इसके लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। बुखार की स्थिति में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें।
5: वाह भाई, बच्चों ने तो हमें भी पास कर दिया।
1: हर सफाई के नंबर 100 में से 100।
6: ब्रेक के बाद फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है।

आनंद बख्शी का लिखा एवं अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ अभी आपने सोहनी माहिवाल फिल्म का ये गीत सुना। आवाजें थी आशा भोसले और अनवर की। कार्यक्रम का अगला गीत दुश्मन फिल्म से, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए उल्हास काशलहर का हिंदुस्तानी शैली में गायन। इनके साथ तबले पर है सुरेश तालवलकर, हारमोनियम पर विश्वनाथन कन्हरे और तानपुरे पर सुनील पांडे और SV गोविंदे। तो श्रोताओं, चलिए सुनते हैं।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उल्हास काशलकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कपूर एंड सन से। गायक कलाकार है बादशाह और फजील पुरिया, रचनाकार कुमार और संगीतकार है अमाल मलिक।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मिस्टर एक्स फिल्म से, गायक कलाकार और संगीतकार है अंकित तिवारी और रचना मुनीश रजा की।

चिरंतन भट्ट के संगीत निर्देशन में तैयार गब्बर इज बैक फिल्म के इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और पलक मुच्छाल ने, रचना मनोज यादव की।

श्रोताओं, हिमेश रेशमिया की आवाज़ में और इन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ, आइए सुनते हैं हमशक्ल फिल्म का ये गीत, रचना मयूर पुरी की।

अरिजीत सिंह के स्वर में आइए सुनते हैं प्रीतम का संगीतबद्ध किया और अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। फिल्म का नाम है दिलवाले।

बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गीत को संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने, गाया है श्रेया घोषाल और गणेश चंदन शिव ने, और रचना की है सिद्धार्थ गरिमा ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: ए भाई, अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया है?
2: डेंगू और चिकुनगुनिया।
1: भाई तो दोनों का गेम कर डाले क्या?
2: अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का, टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा ना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं।
3: पर भाई, ये बीमारी का पता कैसे चलेगा?
2: सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा?
1: वाह भाई, आप तो असल में MBBS हो।
4: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh. With a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network. India goes electric.
1: ए भाई, अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया है?
2: डेंगू और चिकुनगुनिया।
1: भाई तो दोनों का गेम कर डाले क्या?
2: अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का, टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के

0: होल में पानी जमा ना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का एस्प्रिन नहीं।
1: पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई?
0: सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा?
2: वाह भाई, आप तो असल में MBBS हो।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आर्को के संगीत निर्देशन में तैयार आतिफ असलम की आवाज में आइए सुनिए रुस्तम फिल्म का ये गीत, रचना मनोज मुंतशिर की।

राज रिबूट फिल्म के इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, संगीत जीत गंगुली का और रचना कौसर मुनीर की।

श्रोताओं, अगला गीत अरमान मलिक के स्वर में, आइए सुनते हैं अमाल मलिक का संगीतबद्ध किया। ये है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का ये गीत, रचना मनोज मुंतशीर की।

शरीफ और तोशी के संगीत ने निर्देशन में तैयार, मनोज यादव, फरहाद साजिद, दानिश सबरी का लिखा गीत हाउसफुल 3 फिल्म का, गाया है शरीफ और तोशी ने।

गुलजर का लिखा गीत दालेर मेहती, सेन जाहूर और साथियों के आवाज़ों में मिर्ज़िया डेयर टू लव फिल्म के इस गीत को संगीत दिया है एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमारी अधूरी कहानी से। आवाज़ है अरिजीत सिंह की, संगीत जीत गंगोली का और रचना रश्मि विराग की।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1331वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कालिय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरी

0: या भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
0: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
0: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और

0: विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
4: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम

0: अधिकार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है
3: महाराज। मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा? इस गद्दी पे बैठ के सिद्धार्थ
6: को मिलना चाहिए। इसके पास जा रहा
3: है कुमार देवदत्त। आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

0: देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
1: पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय

0: टके तू।
1: आज्ञा दत्त,
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: राह फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो।

0: नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है।

0: आत्माए, सर्वं तत्स्वयं स आत्मा। यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
1: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है, और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
0: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1331वीं कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए आनंद बख्शी के लिखे कुछ गीत। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार और कवि आनंद बख्शी का जन्म 21 जुलाई 1930 में रावलपिंडी में एक मोहयल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आकर बस गया। कम उम्र में ही कविता का शौक रखने वाले बख्शी ने भारतीय सेना और रॉयल इंडियन नेवी से में भी अपनी सेवा दी।

श्रोताओं, सेना की नौकरी छोड़ने के बाद वे 1956 में गीतकार बनने के पक्के इरादे से मुंबई आ गए। शुरुआती संघर्ष के बाद उन्हें 1958

0: भाई अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया है?
1: डेंगू और चिकुनगुनिया।
0: भाई तो दोनों का गेम कर डाले क्या?
1: अरे पापा कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम कूलर गमले पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का, टायर प्लास्टिक के कप ग्लास नारियल के खोल में पानी जमा ना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है, मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं।
2: पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई?
1: सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा?
0: वाह भाई आप तो असल में MBBS हो।
3: हे, स्टिल स्टक ऑन ओल्ड कार? स्विच टू स्मार्टर फ्यूल विद मोर सेविंग्स विद विक्टोरियस SCNG। इट्स स्मार्टर बिकॉज इट गिव्स एन इम्प्रेसिव 27.02 किलोमीटर पर केजी माइलेज एंड हैज अंडरबॉडी CNG टैंक, सो यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन बूट स्पेस। मोर सेविंग्स बिकॉज यू गेट ऑफर्स अप टू 50,000 ऑन एक्सचेंज ऑफ योर ओल्ड कार। सो हरी एंड बुक नाउ, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरेना शोरूम टुडे। TNC अप्लाई।
0: हे भाई अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया है?
1: डेंगू और चिकुनगुनिया।
0: भाई तो दोनों का गेम कर डाले क्या?
1: अरे पापा कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम कूलर गमले पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का, टायर प्लास्टिक के कप ग्लास नारियल के खोल में पानी जमा ना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है, मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं।
2: पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई?
1: सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा?
0: वाह भाई आप तो असल में MBBS हो।
4: श्रोताओं, 1962 की फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ ने 1900 उन्हें एक सफल गीतकार के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आराधना, अमर प्रेम, बॉबी, शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहरा और परदेश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए सदाबहार गीत लिखे।

श्रोताओं, 30 मार्च 2002 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके द्वारा लिखे गए गीत आज भी लोगों की भावनाओं और यादों का अभिन्न हिस्सा है।

श्रोताओं, इन्होंने 40 से अधिक वर्षों के करियर में 300 से अधिक फिल्मों के लिए 6000 से अधिक गाने लिखे और अपने सरल, सहज और दिल को छू लेने वाले बोलों के लिए 4 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता।

0: श्रोताओं, अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आनंद बख्शी के लिखे कुछ गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और

0: डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है, और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगे और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to 6 of its former members who passed away recently. They were Nadendra Bhaskara Rao, Omvati Devi, Sudhanshu Seal, Major General Bhuvan Chandra Khanduri, retired, K.P. Dhanapalan and Pyarelal Sankwar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued their protest. Amid ruckus, the chair adjourned the House till 12:30 p.m. When the House met after the second adjournment at 12:30 p.m, the opposition members again continued with their protest over NEET paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, tried to take up the zero hour, but the opposition members continued their protest. Mr. Saikia said there should be healthy debate in the House and people have sent their representatives to raise important issues. The opposition members did not pay heed to the chair's advice. It led to adjournment of the House till 2 p.m. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, tried to raise the issue.

मलयालम भाषा केरल प्रदेश में रहने वाले लोगों का मातृभाषा है, उनका प्रधान भाषा है। भारत का विशेषता के ऊपर लिखे हुए गाने को रचयिता श्रीमान पी भास्करन है। अभी इस गाने को शब्दों को मैं बोलूंगा, आप ठीक तरह सुनकर ठीक तरह लिख लीजिएगा। ना अभी बोल रहा हूं, जन्म तारिणी भारतम आ कर्म मेदिनी भारतम, जन्मकारिणी भारतम आ कर्म मेदिनी भारतम, नम्मलाम जनकूडितन अम्मयागिय भारतम, नम्मलाम जनकूडितन अम्मयागिय भारतम, जन्मकारिणी भारतम कर्म मेदिनी भारतम। यह है इस गाने का अष्टायी या पल्लवी। पहला अंतरा या चरणम को लिख लीजिएगा ना, तलैल मञ्ञणि, ठीक तरह सुनकर लिखना है, मञ्ञणि मामलचूड़िय तंगक्किरीडवुम, तलैल मञ्ञणि मामलचूड़िय तंगक्किरीडवुम, உடலில் சசிய சியாமல சாத்வல கோமல கஞ்சுகவும், உடலில் சசிய சியாமல சாத்வல கோமல கஞ்சுகவும், கழுத்தில் லூ கழுத்தில் நானா நதிகள் சாத்திய பொன்மணி மாலைகளும், கழுத்தில் நானா நதிகள் சாத்திய பொன்மணி மாலகளும், காணுக காணுக, தோ தஃபா ஏகி சப்த, காணுக காணுக ஜன்மபூவின் கோமல மலர்மேனி, காணுக காணுக ஜன்மபூவின் கோமல மலர்மேனி, திருவி அஸ்தாயி ஜன்மகாரிணி பாரதம். दूसरा अंतरा या चरणम, नाना भाषगल अमृतम, ये दोनों शब्द मिलकर भाषगल अमृतम ऐसे आएगा, नाना भाषगल अमृतम पुळियुम नावुम पुंजिरियुम, नाना भाषगल अमृतम पुळियुम नावुम पुंजिरियुम, नाना देशकारुडे நானா வேஷத்தின் ஒளியும், நானா தேசக்காருடே நானா வேஷத்தின் ஒளியும், வீரபுராதன சம்ஸ்காரத்தின் வேரோடும் மண்ணும், வீரபுராதன சம்ஸ்காரத்தின் வேரோடும் மண்ணும், பாரில் சாந்தி வளர்

Akartok? अपना अस्थाई खत्म हो जाती है, काल के साथ अभी ये सीखेंगे। अपना दीदी भी मेरे साथ गा के आएंगे।

0: अच्छा दूसरा अंतरा या चरणम को अभी ले लेंगे, आसान है। क्यों तो पहला चरण का धुन जो था उसी धुन पर आधारित है इस अंतरा भी। अभी ताल के साथ दूसरा अंतरा या चरणम को अभी गाएंगे।
1: गाएं। गाएं। गाएं। गाएं। गाएं। गाएं। गाएं।

0: अच्छा बच्चों, इस गाना आप सीखने के लिए हमें सहायता करने का, यहाँ मालती दीदी हाजिर है, उनका नमस्कार भी अभी तक नहीं बोले।
1: नमस्ते दीदी। नमस्ते।
0: अच्छा, उनके साथ अभी आप ये पूरा गाना शुरू से आखिरी तक गाना चाहिए, गाएंगे?
1: गाएंगे।
0: एक दो तीन।

0: कार्यक्रम समूहगान शिक्षा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:33 हुए हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: बहुत अच्छी तरह आप ये गाना पूरा आप सीख लिए हैं गाना अभी इसको अच्छी तरह अपना दोस्तों मित्रों मित्रों को दोस्तों को सबको मित्रों को उनको भी सिखा के सब मिलकर आपका स्कूल में सब बच्चे मिलकर इस गाने को गाना गाएंगे। अच्छा नमस्ते दीदी को
1: श्रोताओं अभी आप

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला व्हाट्सएप हमें आया है गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और पूरा लोखंडे परिवार का। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं आया सावन झूम के फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें आई है दादो बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा, हसन, बाबू अहमद, मिफ्रा, बेबी चाहत और सादिया का। हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं महबूबा फिल्म का ये गीत।

नीलकमल फिल्म के इस गीत को पसंद किया है संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने।

श्रोताओं, श्री विजयपुरम से कॉकटेल फिल्म के इस गीत को पसंद किया है अजय, कुणाल, पवन, सुजीत, सोहेल, अनुज और राहुल ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही यह कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभाई।
1: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
0: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
1: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
1: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
1: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और

0: न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के तीन बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440 करोड़ 42 लाख रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति

और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज

0: उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक लाइव फोन आउट कार्यक्रम है, इसलिए आप हमें कॉल ना करें, हम स्टूडियो से ही आपको कॉल करेंगे। और आज जिन श्रोताओं से हम जुड़ेंगे उनकी सूची पहले से ही तैयार है, तो आइए देर ना करते हुए बात करते हैं आज के हमारे पहले दोस्त से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: ग्राम नंगला काशियान पोस्ट औरंगाबाद जिला काशीगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साथी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी जी जी, रूप सिंह जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। कैसे हैं?
1: बढ़िया हैं, आपकी दुआएं हैं।
0: जी जी,
1: आप सुनाइए आकाशवाणी में सर जी, कैसे हैं
0: जी? क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ।
0: जी जी, खेती बाड़ी, तो खेत में क्या उगाते हैं?
1: चल रही है जी, अभी धानों की रुपाई चल रही है।
0: जी जी, और आपके वहाँ के मौसम के बारे में कुछ बता दीजिए।
1: यहाँ दो दिन से रिमझिम बारिश चल रही है वैसे तो
0: जी,
1: और ये धानों के लिए हाँ लाभदायक भी है।
0: जी जी, तो रूप सिंह जी रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ सुनता हूँ।
0: जी जी, तो हमारे इस आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म है प्यार जितना नहीं, गाने के बोल हैं तुमसे मिलकर न जाने क्यों, कुछ और भी याद आता है, ओ माँ जो कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ में है।
0: जी जी जी,
1: और कुछ दोस्तों को याद करना चाहूँगा, जैसे अजीत शर्मा हैं, रोशन लाल साहब के हैं, दीपक साहब के हैं रट्टे नंगला से, और बेदराम साहब के अनुप्रिया और खुशी, और आपको और जितने भी कॉलरों को आज शामिल किया जाएगा उन सभी को।
0: जी जी रूप, जी जी, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी जी।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। जी, हमारी
1: हेलो,
0: बात धर्मवीर जी से हो रही है।
1: धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। और आपका परिचय?
0: जी, हम अपना परिचय कार्यक्रम के अंत में बताएंगे।
1: रूम में बताइए करें तो बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, आप कैसे हैं?
0: जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
1: हम ठीक हैं। आपने तो आज हमें सरप्राइज कर दिया, बिना सूचना के ही कॉल दे दिया आपने हमारे पास,
0: जी,
1: तो ये सरप्राइज हो गया। 15 अगस्त आने वाला है और आज दिल्ली में इसकी भरपूर तैयारियां शुरू हो गई है।
0: जी
1: जिस दिन 16 दिवस की भी।
0: जी जी क्या करते हैं आप धर्मवीर जी?
1: हम अपने

0: के काम में बच्चे लगे हैं तो उसमें हम लगे रहते हैं।
1: जी जी जी, तो रेडियो सुनते हैं?
0: रेडियो का तो एक चोली दामन का नाता है, अगर रेडियो नहीं सुनेंगे तो आप लोगों से कैसे जुड़ेंगे।
1: जी जी जी जी, तो
0: समाचार वगैरह जितने भी कार्यक्रम आते हैं आपके, विजयपुरम के एक सैटरडे को कार्यक्रम आता है सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे हेल्थ का,
1: जी जी जी,
0: उससे भी काफी अच्छी जानकारी मिलती है। दिल्ली में भी कार्यक्रम हेल्थ के होते हैं तो ये सब सुनने से थोड़ी सी जानकारी बढ़ती है। सावधानी रखनी पड़ती है कि अभी जैसे डायरिया का मौसम चल रहा है तो डायरिया में कैसे बचें, पानी कैसा पीना चाहिए, तो ये सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आप लोग रेडियो एक गुरु है, आप लोग हमारे गुरु के एक टीचर हैं जो हमें इस तरह से बातें हमें समझने को मिलती हैं।
1: जी जी जी, तो धर्मवीर जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: हम सुनना चाहेंगे, अब जैसे हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में अब तिरंगे की बहार आ गई है,
1: जी,
0: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा,
1: जी,
0: और जैसे कि हमारे पास भी एक बहुत बड़ा तिरंगा है, ठीक समय पे हम उसको लगाते हैं, ठीक समय पे उसको हम, और अब दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चालू हो गई है तो उसी उपलक्ष में तिरंगा फिल्म का गाना है
1: जी।
0: और मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, क्योंकि ये अब जोश एक महीने पहले से ही चालू हो जाता है, हर त्योहार आने से पहले उसका जोश शुरुआत से आ जाता है, फिर धीरे धीरे पूरा उमंग बढ़ती चली जाती है।
1: जी जी, तो
0: आप आइए अभी दिल्ली में अपने 26 जनवरी 15 अगस्त ये सारी परेडें होती हैं 26 जनवरी की और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर, ये खुद सामने देखने से एक लाइफ में एक बार जरूर आके देखना चाहिए।
1: जी जी जी, तो धर्मवीर जी, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं कुछ अपने साथियों को याद करना चाहूँगा आपकी इजाजत हो तो, और पहले तो आप हैं, आपने अपना परिचय लास्ट में देने की बात करी, पवन जी हैं और हमारे बेटे केशव नितिन और पूर्णिमा जी, मोनिका जी और उनके दो बच्चे हैं, और सिप्रा जी, मोनिका सतमी कुंडू जी और पुरुषोत्तम शर्मा जी, लोकेंद्र वर्मा जी और संदीप मक्कर साहब, राकेश गोल्डी, राजेंद्र सैनी और गजराज लोधी, केशरी सिंह, भगवान सिंह और बाकी सुनने वाले हमारे आशुतोष और ये अमल बिमल, सारे श्रोताओं को मैं इनमें शामिल करना चाहूंगा, सभी आमंत्रित हैं, दिल्ली आइए इस उपलक्ष में।
1: जी जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें सरप्राइज कर दिया।
1: जी जी, धन्यवाद।

हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड। श्रोताओं, शायद हमारा संपर्क हमारे दोस्त से टूट चुका है। हम जल्द ही जुड़ेंगे अपने नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, मैं मोहित बोल रहा हूँ श्रीविजयपुरम से। जी
0: जी, मोहित जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी।
1: मैडम,
0: मोहित
1: मुझे तमाशा फिल्म का गाना सुनना है आज।
0: जी, तमाशा फिल्म का जी, कैसे हैं आप
1: जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: जी, क्या करते हैं
1: जी, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ।
0: जी? स्टूडेंट तो गाना वाना सुनना पसंद करते हैं
1: जी,
0: जी। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मैं तमाशा फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा। गीत से बोले अगर तुम साथ हो।
0: जी, ज़रूर। तो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, कुछ और दोस्तों से हम जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: हेलो डियर फ्रेंड।
4: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम।
3: जी जी, गुड आफ्टरनून।
4: मैं सतंगाई से मोनिका बोल रही हूँ।
3: जी जी, कैसे हैं आप?
4: मैं तो बहुत अच्छी हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
3: जी मैं भी ठीक हूँ। क्या करती हैं आप?
4: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम,
3: घर
4: पे रहती हूँ।
3: जी जी, तो रेडियो सुनते हैं?
4: जी मैं तो रेगुलर जी हूँ।
3: जी जी, तो गाने सुनना पसंद करती हो?
4: जी
3: गाने सुनती हो आप?
4: तराने?
3: गाने गाने, गीत गीत गीत
4: गाने
3: सुनती?
4: जी जी, वो तो एनी टाइम। जी बस
3: जी,
4: मैं बस रेडियो है, मैं तो एनी टाइम सुनते रहती हूँ।
3: किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं आप, नए पुराने?
4: सभी सभी पसंद है मैम।
3: जी जी, और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
4: जोश मूवी का।
3: जी जी,
4: हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे, ये गाना।
3: जी जी, तो मोनिका जी
4: डेडिकेट करना चाहते?
3: जी जी
4: दोस्तों के नाम। सबसे पहले तो आप है
3: जी,
4: आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेरी भांजी दीपालक, दीपक दस सर, बुद्धि मैडम
3: जी,
4: शादीपुर से सप्तमी कुंद दीदी है, और स्कूल लाइन से पूर्णिमा मैडम है, बम्फलट से जया दीदी है, बिम्बलीगंज से शिप्रा है, पश्चिम बंगाल से गणेश दास जी है, नैनी चंद जी है, राकेश जी है, बसंती लाल जी है, और दिल्ली से धर्मवीर भैया जी है, उनके दो बच्चे हैं, और पंजाब से पुरुषोत्तम अंकल है, और त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ जी है, और संगीता दीदी है, और सुनने वाले सभी दोस्तों को सुनना चाहती हूँ।
3: जी जी, मोनिका जी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपको कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी
4: आपको।
3: जी जी जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
4: थैंक यू मैडम।
3: जी

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, क्या हमारी जी
1: आशुतोष दबना त्रिपुरा से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी आशुतोष जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे को फ़ोन किया।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ। और देखिए, आपका फ़ोन आया, विजयपुरम से फ़ोन आया, और भी अच्छा हो गया।
0: जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैम जी, अभी तो मैं लंच कर रहा हूँ दोपहर का।
0: जी
1: और फोन भी आ गया,
0: जी
1: खुशियाँ
0: जी
1: ही खुशियाँ।
0: जी, तो आशुतोष जी, आपके वहाँ के मौसम के बारे में बता दीजिए।
1: बिल्कुल मैम जी, त्रिपुरा में तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है।
0: जी,
1: ये बरसात चलेगा लगभग सितंबर तक चलेगा।
0: जी जी
1: ये
0: जी
1: मार्च से शुरू हुआ है
0: जी
1: बरसात,
0: जी तो
1: लंबी टाइम ही रहता है बरसात।
0: जी,
1: और इस साल तो मैम बारिश ज़्यादा हो रहा है। हाँ,
0: जी
1: और देखिए

0: बारिश ज्यादा होने से लोगों को नुकसान हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होने से नुकसान ज्यादा होता है।
1: जी, वो तो है। तो रेडियो सुनते हैं?
0: बिल्कुल सुनता हूँ मैम जी, ये तो बचपन का आदत है रेडियो सुनना।
1: जी, तो हमारे इस रेडियो कार्यक्रम में आपको कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है?
0: ये हेलो डियर फैन, और मैम जी मैं ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो लाइव फोनिंग, लाइव जो
1: जी, लाइव।
0: संडे को शाम को आता है और संडे सुबह जो आता है हेलो फरमाइश और हेलो डियर फैन और हेलो म्यूजिक लवर, ये
1: जी
0: ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ।
1: जी, तो आशुतोष जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
0: आज मुझे मैम जी एक गाना याद आया, 1985 में रिलीज हुआ, फिल्म
1: जी
0: का नाम है प्यार झुकता नहीं
1: जी
0: और गाने का बोल है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों।
1: जी जी
0: मोहन सिंगर लता जी और शब्बीर कुमार जी ने गाया इस गाने को।
1: जी जी
0: इस गाने को लिखा है एसएस बिहारी जी ने और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी ने सुर से साजा इस गाने को। और इस गाने में एक्टिंग किया मिठुन जी और पद्मिनी कुलापुरी।
1: जी जी जी तो आशुतोष जी, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और मैम जी आपका इजाजत हो तो मैं दो चार दोस्तों को याद करता
1: जी
0: हूँ।
1: जी जी ज़रूर।
0: त्रिपुरा से सुनेंगे अविनाश तेली जी और विश्वजीत पाल जी, और असम से प्रेमजी चक्रवर्ती जी, और बिहार से सुनेंगे डॉक्टर सितारे जी,
1: जी
0: और मध्य प्रदेश से सुनेंगे भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा जी, राम बाबू शर्मा जी, मांगीलाल जी, केसरी सिंह राजपूत, और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनना, आप भी सुनेंगे मैम जी।
1: जी जी जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: थैंक यू मैम।
1: जी जी

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी मैम नमस्ते।
0: जी जी नमस्ते।
1: मेरा नाम है सरसों विष्णु कुंडू, मैं शादीपुर विजयपुरम से रहती हूँ।
0: जी, सप्तमी जी
1: और
0: कैसे
1: आज
0: हैं?
1: जो एक मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जो एक सरप्राइज आप लोग दिया, ये बोलने का कोई शब्द नहीं है क्योंकि आज मेरे मन ही मन शिव जी को भी बोला है क्योंकि सावन महीने का पहले सोमवार है।
0: जी
1: और
0: जी
1: मैंने सोचा काश आज मुझे एक बार कॉल लग जाता, तो मैंने सोचा भी नहीं जो आज मेरे को कॉल आएगा क्योंकि मुझे पता भी नहीं था। मैं जस्ट
0: जी
1: मंदिर से ही आई हूँ
0: जी जी
1: तो जब सामने फोन किया तो मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं कुछ सोचा भी नहीं कौन सा गाना दूंगी, लेकिन मेरे दिल में सुबह से यही गाना है इसलिए मैंने गाना

0: यही कहना सुनना चाहती हूँ
1: जी
0: और सबको
1: जी
0: सुनाना भी चाहती हूँ।
1: जी जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: थैंक यू
1: जी
0: मुझे
1: जी
0: कॉल करने के
1: जी
0: लिए।
1: जी जी

0: श्रोताओं, अभी आप हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड सुन रहे थे।
1: हेलो डियर फ्रेंड,

आप सुन रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अनसुनी आवाज़ें वो होती है जो कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है। कभी ये खामोशी में छुपी होती है तो कभी हमारे एहसासों में गूंजती रहती है। ये वो बातें हैं जो कहीं तो नहीं जाती, लेकिन महसूस ज़रूर होती है।

दोस्तों, अधूरी कहानियाँ अक्सर सबसे ज़्यादा याद रहती है क्योंकि उनमें छुपी होती है एक अधूरी सी कसक, कुछ ऐसी बातें जो कहीं नहीं गई हो और कुछ ऐसे पल जो पूरे नहीं हो पाए हों।

दोस्तों, ज़िंदगी के रंग कभी एक जैसे नहीं होते। हर दिन अपने साथ एक नया एहसास लेकर आता है। कभी खुशियों से भर देता है तो कभी हमें थोड़ा मजबूत बना जाता है। यही बदलते रंग ही ज़िंदगी को और भी खास बना देता है।

दोस्तों, उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, हौसलों से भरी जाती है। जब सपनों को विश्वास मिलता है तो हर ऊंचाई आसान लगने लगती है, और गिरकर फिर से उठना ही असली उड़ान है।

दोस्तों, हर पल छोटे होते हैं लेकिन इनकी अहमियत बहुत बड़ी होती है। कभी ये हंसी बनकर दिल में बस जाते हैं तो कभी याद बनकर साथ रह जाते हैं। हर पल बहुत खास होता है, बस उसे जीने का अंदाज होना चाहिए।

दोस्तों, कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, वो खामोशी में भी मुस्कुराते हैं। जब दिल किसी को अपना लिखते तो हर धड़कन एक नज़्म बन जाती है।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजे हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार,
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सेहतनामा कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं EISSMS पुणे।
1: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए EISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ EISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशंस के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
2: ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि अगर मसल्स ही वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं
3: जी। तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली?
2: सो पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली, इसे हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना जरूरी है
3: जी।
2: ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है, प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है
3: जी। तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी,
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है
3: जी। और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका।
2: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूँ, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं
3: जी।
2: ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है, क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है
3: जी,
2: लेकिन
3: जी,
2: वो एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में, काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डेट

0: अपने लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है, ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए। सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है। लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
1: जी जी।
0: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है, और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, डर बना रहता है, ये जरूरी नहीं है। ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होने का डर रहता है। तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स, और सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
1: जी, बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि हम जाएंगे हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
0: एब्सोल्युटली कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है,
1: जी हाँ,
0: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी पड़ता
1: जी,
0: है।
1: जी जी।
0: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो, वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है,
1: जी।
0: और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है,
1: जी जी।
0: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं। सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: मान लेना कि नहीं अभी इसकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफर ही होना है, ये गलत बात है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इम्प्रूव हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं, और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
0: सो ये दो चीज होती है, अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है, जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं, और इसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है, जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है। अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना, वो हम कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है, कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बायपास करना सीखना पड़ता है, कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बायपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस चला जाता है और बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी,
0: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है।
1: जी।
0: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं, कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं।
1: जी।
0: क्योंकि नहीं तो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं।
1: जी, और सारा फोकस सारा ध्यान उसी पर रहता है।
0: एब्सोल्युटली,
1: कि कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन,
0: और फिर वो डर सा रहता है कि अगर कपड़े में कुछ बूंदे हो गई
1: तो,
0: और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है, कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब।

0: भी आपने स्मेल की बात की, तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है? स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई
1: दैट्स
0: बार।
1: राइट. सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है,
0: जी
1: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा. अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है. सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण है, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है, तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर,
0: जी
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन, या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है।
0: जी
1: जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन अवर बॉडी,
0: जी जी
1: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या पोटेशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है,
0: जी
1: जो हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस।
0: जी
1: लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है, और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
0: जी जी
1: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
0: जी
1: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
0: जी
1: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है,
0: जी
1: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
0: जी जी
1: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
0: बिल्कुल
1: सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से

0: कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है।
1: जी।
0: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई। एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है।
1: जी जी।
0: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं।
1: जी जी।
0: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
1: जी, जी।
0: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है।
1: जी।
0: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकेंड लाइफ मिलती है।
1: जी।
0: सो ये जानना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
1: जी जी।
0: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है, और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
0: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
1: जी जी, जी।
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता है।
1: जी बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने, और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सबसे बड़ा

0: अक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी
0: किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
1: जी
0: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है।
1: जी जी
0: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको, जो लोगों को पता नहीं है लेकिन टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है। और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन, यहां दो तीन चीजें हैं। ऑफकोर्स लाइफ स्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं।
1: जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर।
0: जी,
1: तो अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाएं, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो।
1: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज़, पर्दे पर साधना, सुनते हैं ये गाना।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट
0: जी
1: ग्लैंड. हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है. लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं. कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं. किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है. अगेन, राइट टाइम में डिटेक्शन होना जरूरी है.
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात,

0: गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती है, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए आप एक्सपर्ट को पूछिए।
1: जी।
0: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको डाउट है जरूर सेकेंड ओपिनियन लीजिए, लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है।
1: जी।
0: आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो। और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 and 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यह भी मैं जानता हूं कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है।
1: जी, जी।
0: लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिवेंशन, एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, adequate water drinking and time to time regular checkup. I think this will give a good roadmap for a good health, and I think that's the most crucial thing in modern time.
1: जी,
0: थैंक यू वेरी मच
1: डॉक्टर साहब। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। समय के स्केल पर हमें नहीं पता कि कब हमारे दिल पर लिख गया था तुम्हारा नाम। समय की शुरुआत से चल रहा है जो सफर, उसे समय के आखिर तक कायम रहना है। हम और तुम समय के थपेड़ों के बावजूद मिलते रहे हैं, हम चलते रहे हैं साथ, और बस साथ ही चलते रहना है हमें। ये सफर जिंदगी का नहीं, समय का सफर है, और हर पल के चेहरे पर तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए।

दुनिया बधावासियों का मेला है। ये धक्के मारती दुनिया, ये कंधे चीलती दुनिया, ये दुनिया जिसमें ख्वाब टूटते हैं, ये दुनिया जिसमें लगती है दिल की खरोंचें। कभी कभी लगता है कि दुनिया की भीड़ से अलग हो कोई ऐसा अलग कोना जहां हम तुम साथ बैठ सकें और अपने दिल का राग छेड़ सकें, ऐसा कोना जहां हम खुद से मुलाकात करें और फिर बस वो लम्हे हमेशा के लिए खिल जाएं दिल की वादियों पर।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए।

आवाजों का कोई मजहब नहीं होता। आवाजें दुनिया की तमाम सरहदों के पार चलती हैं। हम सब महज एक शख्स नहीं, एक किरदार नहीं, आवाजें हैं हम। हम आवाजों की दुनिया के मुसाफिर। हमें कायम रहना है हमेशा एक आवाज की शक्ल बनकर। तुम्हारी आवाज गूंजती रहे कानों में, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे बांसुरी की मीठी तान, जैसे झरने की प्यारी मुस्कान।

तुम्हारी बातें गूंजती हैं हमेशा कानों में, गूंजती है तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान का एक सुर है जो इस कमरे में गूंजता रहता है हमेशा। तुम नहीं होती तब भी तुम होती हो अपनी सुरीली बोली बनकर। तुम्हारी आवाज को अपने कानों में सजा लेते हैं हम, और बस उसके बाद हमें दुनिया में किसी चीज की दरकार।

0: छाया गीत में आज थे भूपिंदर सिंह के कुछ बेमिसाल नगमे। फिल्मों के नाम, थोड़ी सी बेवफाई,
1: आज बिछड़े हैं,
0: फिल्म मौसम,
1: ढूंढता है फिर वही,
0: फिल्म किनारा,
1: मेरी आवाज ही पहचान है,
0: और फिल्म दूरियां,
1: सामने दीवार थी गुजरियों की।
0: आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद कर

0: मिलेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: बीतती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने, बस कुछ ही पलों में।

0: 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं धनवान फिल्म के गीत से। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। संगीत तैयार किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने।

बैंड बाजा बारात। अब सुनिए इस फिल्म का गीत सलीम मर्चेंट, हर्षदीप और साथियों की आवाजों में। संगीत सलीम सुलेमन का, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: तेरे मेरे सपने, अब आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। नीरज के लिखे इस गीत की धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये है विविध भारती।
5: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेली।
6: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
7: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
5: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
8: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
6: विविध भारती पर हर पल है खास।
5: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
9: आज के फनकार।
6: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
9: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
5: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
10: विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए अब जुबिन नौटियाल को सुनते हैं फिल्म तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म में प्रीतम के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान

0: दिल पर अंजपे की उजाले उनकी यादों के 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए,
2: अब सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

तराने ने पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे 6:05 से। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी

0: भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हम्द बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस की जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बोल रहे हैं तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए शांतनु मोहित्रा के संगीत निर्देशन में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। आवाज दे रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल। फिल्म का नाम 3 इडियट्स।

दी दनादन फिल्म से अगला गीत आपको सुनवाएंगे, जिसे आवाज़ दी है मिक्का सिंह और साथियों ने, बोल इरशाद कामिल के हैं तथा रीमिक्स डीजे चेतस और डीजे एनवाईके द्वारा किया गया है।

पॉप मसाला कार्यक्रम में अगला गीत पेश है दिल बोले हरियप्पा फिल्म से, जिसे रीमिक्स किया है मास्टर सलीम ने, बोल जयदीप सहनी के है तथा संगीत प्रीतम का है।

श्रोताओं, अब पेश है इस कार्यक्रम पॉप मसाला का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है क्लिक फिल्म से। कलाकार हैं विजय प्रकाश, सुनिधि चौहान, के एन और शमीर टंडन।

आज के लिए पॉप मसाला कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसे ही जुड़ी रहिए और सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। पॉप मसाला कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, 7:20 पर आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम।

दिल्ली से कार्यक्रम संसद समीक्षा आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:15 पर आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का। रोजगार समाचार और गौरवगान प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:30 पर।

अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 6:10 पर सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर सवेरे 6:30 पर रामचरित मानस गान, सवेरे 6:40 पर वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान सुनिए, सवेरे 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। जन सूचनाएं का समय रहेगा सवेरे 7:00। प्रादेशिक समाचार प्रसारित होगा सुबह 7:05 पर। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30। सवेरे 8:00 दिल्ली से समाचारों का प्रसारण होगा, सवेरे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। सुगम संगीत के कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30। आप रानू मुखर्जी और श्रद्धा को सुनेंगे। तराने सुहाने कार्यक्रम का आनंद लीजिए प्रातः 9:00।

इन कार्यक्रमों के बाद रात्रि 8:15 पर सुनिए चित्रपट संगीत और रात्रि 8 बजे सुनिए संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। युवाणी का समय रहेगा 7:30।

0: श्रोताओं, अब से कुछ ही देरों में आप समाचारों का प्रसारण सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सत्र जनहित के मुद्दों पर सार्थक और परिणामकारी रहेगा। अंडमान लॉ कॉलेज को उत्कृष्ट विधि शिक्षण संस्थान बनाने के लिए गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहयोग करेगा। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने द्वीप समूह में बेहतर समुद्री संपर्क के लिए 3 नए चार्टर जहाजों के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

0: द्वीप समूह में कार्मेन्स्कोप तट पर पहली साइकिलिंग रोलर प्रतियोगिता संपन्न हुई। सांध समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में हाल ही में दिवंगत 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा में कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। राज्यसभा में नव निर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। सत्र प्रारंभ होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मानसून सत्र जनहित के मुद्दों पर सार्थक और परिणामकारी रहेगा।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: इस बीच कुछ मुद्दों पर दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के कुलपति प्रोफेसर डॉ. शांता कुमार ने अंडमान लॉ कॉलेज को उत्कृष्ट विधि संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए हर संभव शैक्षणिक सहयोग का आश्वासन दिया है। अंडमान लॉ कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के सहयोग से कॉलेज में अकादमिक सहयोग, छात्र विनिमय और संसाधन साझा करने को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों संस्थानों के बीच शीघ्र ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रोफेसर शांता कुमार ने छात्रों से साइबर कानून, डेटा गोपनीयता और फिनटेक जैसे उभरते विधिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस अवसर पर अंडमान लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ. PVN शर्मा तथा गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. नितिन मलिक भी उपस्थित थे। चेन्नई ए ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल टी हरितेजा ने स्वतंत्र इन्फेंट्री कंपनी NCC का प्रशासनिक निरीक्षण किया। उन्होंने इकाई की प्रशासनिक दक्षता, प्रशिक्षण गतिविधियों और समग्र कार्यप्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण की शुरुआत कमांडिंग ऑफिसर CO कर्नल KY सिंह द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण से हुई, जिसमें इकाई की संगठनात्मक संरचना, प्रशिक्षण गतिविधियों, उपलब्धियों, प्रशासनिक व्यवस्था तथा संचालित पहलों की जानकारी दी गई। उन्होंने निर्धारित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का भी आकलन किया। इसके लिए प्रशासनिक अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की गई। उन्होंने अधिकारियों, स्थायी प्रशिक्षण स्टाफ, असैनिक कर्मचारियों तथा अन्य कर्मियों से संवाद किया और उन्हें अपने कार्य तथा कल्याण से जुड़े सुझाव एवं समस्याएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, चार्टर जहाज और साइकिलिंग रोलर प्रतियोगिता संपन्न। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने लॉन्ग आइलैंड, डिगलीपुर और ननकौड़ी में 50 यात्री क्षमता वाले जहाजों के संचालन के लिए 3 ऑपरेटरों के साथ चार्टरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्रों में लोगों के लिए समुद्र संपर्क को बढ़ाना है। पहला चार्टर जहाज MV सरोज ने आज प्रातः 7 बजे लॉन्ग आइलैंड से येरटा मार्ग पर अपनी पहली यात्रा शुरू की। इस उद्घाटन अवसर पर लॉन्ग आइलैंड के प्रधान B. कामराज और स्थानीय

निवासियों ने जहाजरानी सेवा के उपनिदेशक जी गोपीनाथ की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डिगलीपुर और ननकौड़ी के लिए अन्य चार्टर जहाज़ों को भी शीघ्र ही सेवा में शामिल किया जाएगा। सभी चार्टर जहाज जहाजरानी सेवा निदेशालय के पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण में संचालित होगी। संचालकों को मौजूदा अनुमोदित परिचालन और समय सारणी का पालन करना होगा तथा निदेशालय द्वारा निर्धारित सभी परिचालन मानकों, सुरक्षा नियमों एवं सेवा आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि इन जहाज़ों के संचालन से मौजूदा यात्री किराए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्य भूमि के विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी तथा गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अंतिम मेरिट सूची और काउंसलिंग कार्यक्रम की घोषणा की। MBA पाठ्यक्रम की अंतिम मेरिट सूची 21 जुलाई से कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। अन्य शेष पाठ्यक्रमों के लिए 11 जुलाई को प्रकाशित अनंतिम मेरिट सूची को ही अंतिम मेरिट सूची माना जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28 जुलाई को प्रातः 10 बजे से श्री विजयपुरम स्थित टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सभागार में आयोजित होगी। इस दौरान विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों को सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 5 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, जमानत के लिए 2 स्थायी निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अंडमान और निकोबार राज्य खेल परिषद ने कल कार्बनस्कोप तट पर पहली बार साइकिलिंग रोलर प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। खुली श्रेणी की इस प्रतियोगिता में द्वीप समूह के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साइकिल प्रेमियों और युवा प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह में खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक आदित्य संगोत्रा ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर कहा गया है कि द्वीप समूह में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता से केंद्र शासित प्रदेश में साइकिलिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा भविष्य में इस प्रकार की नवाचार आधारित खेल गतिविधियों के आयोजन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली अंडर-17 बालिका फुटबॉल टीम 18 से 27 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप अंतर्राष्ट्रीय इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों में जुटी है। राज्य चैंपियन बनने के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए नेताजी स्टेडियम में टीम का 45 दिवसीय राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को आयोजित सुबह के प्रशिक्षण सत्र के दौरान दक्षिण अंडमान की उपायुक्त पूर्वा गर्ग ने शिविर का दौरा कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। शिक्षा विभाग के अनुसार अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में तकनीकी कौशल, शारीरिक क्षमता और मैच संबंधी तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सत्र जनहित के मुद्दों पर सार्थक और परिणामकारी रहेगा। अंडमान लॉ कॉलेज को उत्कृष्ट विधि शिक्षण संस्थान बनाने के लिए गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहयोग करेगा। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने द्वीप समूह में बेहतर समुद्री संपर्क के लिए 3 नए चार्टर जहाज़ों के संचालन के समझौते पर हस्ताक्षर किए और द्वीप समूह में कार्बनस्कोप तट पर पहली साइकिलिंग रोलर प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दादू, कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले,
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:26 हुए हैं।

पहले मौसम, मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। वहीं मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयान MV हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर 22 तारीख को सवेरे 7 बजे शिवजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी अगले दिन 23 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए शिवजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड 22 तारीख को सुबह 6:30 पर शिवजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा। इस जलयान की वापसी उसी दिन बुधवार 22 तारीख को दोपहर बाद 1 बजे लिटिल अंडमान से छूटकर शिवजयपुरम के लिए होगी। जलयान भरत सीमा मंगलवार 21 तारीख को दोपहर 12 बजे शिवजयपुरम से कार निकोबार के लिए रवाना होगा। अगले दिन यानी 22 तारीख को शाम 4 बजे इसकी वापसी यात्रा कार निकोबार से शुरू होगी, लिटिल अंडमान होते हुए शिवजयपुरम पहुँचेगी। 23 तारीख को MV कालीघाट सुबह 7 बजे शिवजयपुरम से कैमल बे के लिए प्रस्थान करेगा। रास्ते में यह जलयान लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा और ननकौरी बंदरगाहों पर ठहरते हुए कैमल बे पहुंचेगा। इसकी वापसी यात्रा 26 तारीख को कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए शिवजयपुरम के लिए होगी। MV नालंदा 21 तारीख को सुबह 9 बजे शिवजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैमल बे के लिए रवाना होगा। वापसी यात्रा 23 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से शुरू होगी तथा ननकौरी होते हुए जलयान वापस पहुंचेगा, शिवजयपुरम आएगा। 21 तारीख को MV हडबे सुबह 6 बजे शिवजयपुरम से रंगत के लिए रवाना होगा। यह जलयान स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत पहुंचेगा। वापसी यात्रा उसी दिन दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड होते हुए शहीद द्वीप से शिवजयपुरम वापस आएगा। MV कमोटा कल यानी 21 तारीख को सुबह 6:15 पर शिवजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। 8:30 पर यह जलयान शहीद द्वीप से शिवजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। MV बम्बुका कल 21 तारीख को सुबह 6:15 पर शिवजयपुरम से स्वराजदीप के लिए रवाना होगा। इसकी वापसी यात्रा सुबह 8:45 पर उसी दिन स्वराजदीप से छूटकर शिवजयपुरम आएगा। कल यानी मंगलवार 21 तारीख को सवेरे 9:11 MV रंगत शिवजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। यह जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप के लिए रवाना होगा तथा इसकी वापसी उसी दिन 2:30 पर स्वराजदीप से छूटकर शिवजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड 11:30 पर शिवजयपुरम से स्वराजदीप के लिए प्रस्थान करेगा। दोपहर 2 बजे यह जलयान स्वराजदीप से शहीद द्वीप जाएगा। इसके पश्चात दोपहर 3:30 पर शहीद द्वीप से शिवजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। कल यानी 21 तारीख को दोपहर 2:30 पर MV कमोटा शिवजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। कल ही शाम 4:30 पर यह शहीद द्वीप से स्वराजदीप लौटेगा। MV रानीचंगा कल 21 तारीख को शाम 5 बजे शिवजयपुरम से स्वराजदीप के लिए रवाना होगा। अगले दिन यानी 22 तारीख को यह जलयान सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप होते हुए शिवजयपुरम वापस आएगा।

श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों पर गैरकानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन में किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबर पर दी जा सकती है 03192240127, 03192238881 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति का पहचान गुप्त रखी जाएगी। जन सूचनाएं समाप्त हुई।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:22 हुए हैं। अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम, दिल ने फिर याद किया।

दिल्ली फिर याद क्या कार्यक्रम में पहला गाना सुनते हैं रावण फिल्म से। इस गाने को रेखा भारद्वाज और जावेद अली ने अपनी आवाज़ें दी है। गीतकार गुलजार है व संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं कृष्णा फिल्म से। इस गीत को गाया है अभिजीत और साथियों ने, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने तथा इसके बोल लिखे हैं निदा फाजिल ने।

श्रोताओं, कृष्णा फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के शिवजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 20 जुलाई है और प्रत्येक वर्ष आज के दिन को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शतरंज के खेल को बढ़ावा देना तथा लोगों में बौद्धिक विकास के प्रति जागरूकता फैलाना है। शतरंज एक प्राचीन और लोकप्रिय खेल है जिसकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। इसे पहले चतुरंग के नाम से जाना जाता था, बाद में यह खेल दुनिया के अनेक देशों में फैल गया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। शतरंज केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य, एकाग्रता और रणनीति सोच को विकसित करने वाला खेल है। इसे खेलने के निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान कौशल और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है।

है। यही कारण है कि विद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में भी शतरंज को प्रोत्साहित किया जाता है। दोस्तों, हमें भी इस खेल को अपनाना चाहिए और नियमित अभ्यास के माध्यम से अपनी मानसिक क्षमता का विकास करना चाहिए। विश्व शतरंज दिवस हमें यह संदेश देता है कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और सही रणनीति से जीवन की हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है।

दोस्तों, आज के दिन का और एक खास महत्व है। प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मानव की अंतरिक्ष खोज और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य चंद्रमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा भविष्य की पीढ़ियों को नई खोजों के लिए प्रेरित करना है। यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 20 जुलाई 1969 को मानव ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उप

दोस्तों, आज के दिन का और एक खास महत्व है। प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मानव की अंतरिक्ष खोज और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य चंद्रमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा भविष्य की पीढ़ियों को नई खोजों के लिए प्रेरित करना है। यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 20 जुलाई 1969 को मानव ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह रात की आकाश की शोभा बढ़ाने के साथ साथ पृथ्वी पर ज्वार भाटा जैसी प्राकृतिक घटनाओं को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा पर किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों की संरचना और अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में सहायता मिलती है।

दोस्तों, आज माह का तीसरा सोमवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें।

तुम भी कमाल करते हो, इस रात के अंधेरे में चांद को छोड़कर जमीन की बात करते हो। खिड़की से झांकता है वो सफेद संगमरमर सा, लगता है आसमान से आज फिर तेरी तस्वीर चुराई है। चांद भी हैरान है मेरी बेबसी देखकर, उसने पूछा, रात भर किसके लिए जागते हो।

दोस्तों, ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर एक नया सबक लिखा होता है। कभी यह धूप की तरह तपती है तो कभी छांव की तरह सुकून देती है। जिंदगी बहुत सरल है, लेकिन हम इसे पेचीदा बनाने पर तुले रहते हैं। जिंदगी वैसी नहीं जैसी या हमें मिली है, बल्कि वैसी है जैसा हम इसे बनाते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ पाने की चाहत थी, पर जब जिंदगी को करीब से देखा तो लगा बस सुकून ही काफी है।

मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जिंदगी छोटी है, बस मुस्कुरा कर जियो, ना जाने कब आखिरी बात होगी। किसी के बिना रहना दुनिया के सबसे कठिन अनुभवों में से एक है, पर यही अनुभव हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाता है। यह अकेलापन और खुद से मिलने के बीच का एक सफर है। किसी के बिना रहना मुश्किल इसीलिए नहीं होता कि वो साथ नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारी रूह को उनकी मौजूदगी की आदत हो चुकी होती है। शुरुआत एक मजबूरी लगता है, पर धीरे धीरे यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बहुत मुश्किल है खुद को समझा पाना जब दिल को आदत हो किसी के साथ की। अब दीवारों से बातें करना सीख लिया है, क्योंकि तन्हाई में आवाज़ सिर्फ अपनी ही आती है।

वो साथ थे तो वक्त का पता ना चला, अब वो नहीं तो वक्त कटती ही नहीं। जिंदगी की महफिल में लोग तो बहुत हैं, पर उनकी कमी को कोई भरता ही नहीं। किसी के बिना रहना भी एक हुनर है जो हमें खुद की अहमियत सिखा देता है। टूटते तो सब है किसी के जाने के बाद, पर जो संभल जाए वही जीना सिखा देता है। दोस्तों, प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की खामोशी को पढ़ने का हुनर है। एक सच्चा हमदम वह नहीं जो सिर्फ आपकी खुशियों में शरीक हो, बल्कि वह है जो आपके दुखों को आधा कर दे। जिंदगी अधूरी सी लगती है जब तक कोई ऐसा ना मिले जो आपकी कमियों को जानते हुए भी बेहतर तरीके से पेश आए। हमदम मिला तो लगा जैसे मंजिल मिल गई, सूखी थी जो जमीन उसमें कलियां खिल गई। अब डर नहीं हमें अंधेरे के सफर से, उनकी आंखों की रोशनी जो हमें मिल गई।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।

श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। अब समय है रात्रि 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही समय के बाद प्रस्तुत है कार्यक्रम संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर

में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषयक प्रशिक्षण

कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि NCS परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र MCC स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से NPP के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉ सतीश पूनिया और प्रकाश बड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगा साई रामकृष्ण और H. हनुमंथप्पा के साथ ही खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने NEET UG 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी

सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया, हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

श्रोताओं, अभी आप संसद समीक्षा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिवजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:16 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, चित्रपट संगीत के इस सुरीले सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हिंदी फिल्मों के सदाबहार गीतों के साथ कुछ यादगार पल बिताते हैं। कार्यक्रम का आगाज करते हैं आनंद फिल्म के एक गीत के साथ, जिसे गाया है मुकेश ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने व इस गीत को संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने।
1: मैंने

श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं मेरे अपने फिल्म से। सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने व बोल गुलजार के हैं।

श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म संजोग से। लता मंगेशकर की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत तथा आनंद बख्शी के बोलों से सजा ये गीत।

पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत APCCF नोडल अधिकारी FCA एवं MS अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा संविदा आधार पर कंसल्टेंट के दो पदों पर योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति वित्त वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 40,000 रुपये का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति का स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होगा। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत

अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, मेरीन बायोलॉजी, ओशियन स्टडीज तथा समकक्ष विषय में स्थानक डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही पर्यावरण अध्ययन, इम्पैक्ट असेसमेंट, एकोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, रिस्क एनालिसिस तथा पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित कार्य अनुभव तथा एमएस ऑफिस का कार्यसाध ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन 100 अंकों की वेटेज आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अंडमान एवं निकोबार विभाग तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की वेबसाइट https://forest

साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र अंडमान एवं निकोबार विभाग तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की वेबसाइट https://forest.and.nic.in एवं https://andaman.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित कार्यालय APCCF वन सदन हेडो शिवजयपुरम में केवल ऑफलाइन जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 29 जुलाई 2026 को 5 बजे तक जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं अब सुनिए गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर

0: में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारिसी स्वेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनौ में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति के मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में

0: पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग

0: पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक एक या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भरत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी

फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 0117171 7117, 0112331 4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आईटी

0: भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है?
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेस होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूँ आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी जरूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फरहास अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फोन करेंगे और उनके मन में कोई यार बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोगों जहाँ पर वो अटक गए हैं, जहाँ उनको डाउट है।
0: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी,
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
1: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज़ से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपए वहां शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते, कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
0: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहत आपने। देखिए ये जो पांच मैंने इनकम्स बताई थी, उन पांच इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना, तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज जो मैं जरूरी बताना चाहूंगा, एक फॉर्म 26AS होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी पूरी इनकम से, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है। तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पर मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए, ये सब। अब देखिए इसमें जरूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने जरूरी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन और ये फिगर कहां से ली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
0: बिल्कुल। अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और FD पर अगर TDS कटता है तो ITR इसमें कैसे दिखाएंगे?
3: देखिए कि वैसे तो एक आपका TDS जो है FD के ऊपर वो 40,000 रुपए तक अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और

0: तो 50 की लिमिट है, लेकिन उसके बाद जो TDS है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं
1: जी। और अभी कौन श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से अमित झा। जी अमित जी,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, कोहली सर का नमस्कार। सर
3: नमस्कार अमित जी, नमस्कार।
2: सर मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप।
3: अच्छा अच्छा, जी जी जी।
2: हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर, मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो XYZ
3: जी,
2: तो सर तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ
3: जी।
2: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर, क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर? धन्यवाद।
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है, हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और बिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है, तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। परंतु अगर आपको जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई TDS कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है, डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल जैसा फारद ने शुरू में बताया था कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है, तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो फाइल कर देते हैं, बट टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर जरूरी नहीं। आप जो बता रहे हैं हमें, अगर आपका 12 लाख रुपए से कम का है तो आप 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं ऑप्शन।
1: शरद जी, छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए ITR में कोई छूट है क्या?
3: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन को नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं, और एक सीनियर सिटीजन के लिए ये होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स पे करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस कि वो बिजनेस इनकम है, कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ के हैं उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं, और मैं तो आज शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं, और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको अब आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं, और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फरहद बहुत लंबा दिख सकता है।
1: ये बात एकदम सही कह रहे हैं, हर साल हम लोग भरते हैं लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में संशय रहता है, डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए, तो उस चीज़
3: और मैं उसी पे आ रहा था। तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, सिर्फ ये कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है, आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी
1: एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन। जी मकसूद जी,
4: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार
4: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
3: जी हुसैन साहब बताइए।
4: जी मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जनसेवा केंद्र चलाता, तो उस पर ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है
3: जी,
4: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 30

0: चीज मार्केट पहुंच जाता है जी। अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताएं सर जी।
1: नहीं, जन सेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब के वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा, तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी, तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फरद में ठीक समझ रहा होगा, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके बदले में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको, आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे हैं, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
2: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। जी रशीद जी
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है
1: जी,
3: तो क्या 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, तो एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ,
1: इसके
3: बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिजिम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर, थैंक यू।
1: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को पहले आपके, मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था ATTTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पस ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ, उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा, पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ही होता
2: जी बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या ITR के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
4: नहीं, ITR के लिए उसको, अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो जरूरी हो गया। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
1: और मैं आपकी इजाजत हो फरहत, तो इसमें कुछ अश्विनी इजाजत दें तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो ऐसे में एक हल निकला है, हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर MSMEs को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में ला के और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। GST भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन GST शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं जब छोटा काम होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है। तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
4: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो GST नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको GST की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता दे।
1: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
2: आप लोगों से हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से NP सिंह जी।
5: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
5: मेरा नाम NP सिंह है, मैंने एब्रीवेशन बताई थी नागपुर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
5: शरद जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
1: अच्छा, प्लेजर सर।
5: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर।
1: हाँ जी।
5: एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
1: जी।
5: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है अनियमितता को छोड़कर, ये लॉटरी सिस्टम

0: होता है। दूसरा आई एम सो सॉरी। अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रख सकें।
1: अच्छा
0: और कौन सी ऑप्शन बेटर है
1: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, मैं क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिनको जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम कैस बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क ये है, पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है, पर अब एक डेटा ये कहता है और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है अब की बार, जो जैसा लोग बता रहे हैं। तो न्यू रिजीम उनके लिए है जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शंस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है एनपीएस उसको छोड़ के, बाकी सारी डिडक्शंस न्यू रिजीम में हटा दी गई हैं। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको यह सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम्स है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश करता
2: हूं। अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं?
3: मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे LIC में है, NSE में है, FD है या इस तरह की, तो वो या PPF है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
2: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक है विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं? और मेरा ये प्रश्न है।
1: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, तो वहां पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में 2-3 कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम NRI कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये शख्स जो है भारत से बाहर ही रहते हैं पर वो पैसा अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं, तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है, उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति को जो NRI है उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहां पर भी इनकम है, फरहद वहां पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है जिससे उसको डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
2: अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी NGO चलाते हैं और पिछले 2 साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से NGO को क्लोज करना चाहते हैं, तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
1: देखिए अगर तो NGO रजिस्टर्ड है और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है फिर तो भरना पड़ेगा। हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि NGO फर्क 2 तरीके के होते हैं। एक NGO होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है,

0: क्योंकि एनजीओ आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं है, आप तो जन सेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी, पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड एनजीओ हैं तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं, आपके सवाल से एक बहुत जरूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने 3 साल से फाइल ही नहीं करी,
1: हाँ,
0: तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई, रह गई जाने में अनजाने में। तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। पर उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, 3 साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, 2 साल पुरानी है तो 50%, 3 साल पुरानी है तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे तब आपको सरकार ये इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है। और वो फिर कंपलसरी, जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह, थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
1: शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है, एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश जी। जी प्रकाश जी।
2: भरत जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
0: सर हमारा भी सब प्रेम,
1: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
2: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
0: जी
2: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे क्या कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच कोई फर्क है, क्या थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें।
3: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हो एडिशनल वैसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग आईटीआर दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस।
0: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्ज होता है किसी की गलतियां निकालना। आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये महोदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, क्योंकि गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियां को बयान करने में चला जाएगा।
1: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
3: ऐड करूंगा इसमें कि कोई अगर ये अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती।
0: नहीं, उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है, पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता,
3: नहीं ठीक करता और वो फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।
0: नहीं नहीं, वो मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी, इनकम
3: गलत है, लेकिन जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप,
0: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं और फिर वो 26AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर। मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है,
1: ध्यान से भरिए अपनी हर एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए तो शायद आप गलती करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
4: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार
4: सभी पैनल को।
0: नमस्कार
4: सर, पिछले साल जिस यूजर आईडी, तो यूजर आईडी से ही होता है, जिस पासवर्ड से हम भरे थे वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो इसमें लिख के आ रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया,
0: तो
4: अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ।
0: तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर नहीं तो तुरंत मोबाइल पे OTP आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं। अब क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक CPGRAMS करके वेबसाइट है उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और CPC बैंगलोर है उसके फोन नंबर भी है, क्योंकि अब समय कम है।

0: वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है, तो सीपी ग्राम्स का एक ई निवारण पर, ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए सीपी ग्राम्स में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा। या मैं आपको सलाह दूंगा सीपीसी बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
1: जी शरद जी, हमारे पास भी समय बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि जी।
2: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
2: जी, मैं रवि जवालिया हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो 2-3 साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पर क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर सर मैं ये जानना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
0: अरे अरे रवि जी, आप क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत तो उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का, मतलब आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है आप नहीं भर रहे हैं, तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा। पेनल्टीज बहुत भारी है, मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूं, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले 2 सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
1: और अब थोड़ा सा समय बचा है, तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
0: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फरद ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न आ रही है आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इंफॉर्मेशन को चेक जरूर कर।
1: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करेंगे, 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए।
1: जी, और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब।
0: शुक्रिया,
1: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत। और हमने सीखा आज की ITR सिर्फ टैक्स का कागज नहीं है, ये आपकी आर्थिक

का निधन 90 वर्ष की आयु में 26 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। सदस्य थे वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर

देश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धन पालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा यह अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद

0: की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्नकाल प्रश्न नंबर वन धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर एक।
2: प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया, उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है, और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी वो सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
0: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, मैं आपको प्रयास में दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना

0: सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 306।
1: श्रोताओं, अभी आप दिल्ली से समाचारों का प्रसारण सुन रहे थे और सांसद समीक्षा आपने सुना। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:14 हुए हैं। अब पेश है आपका और हमारा पसंदीदा कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से इस विशेष कार्यक्रम संदेश से आते हैं मैं आपका हार्दिक स्वागत है। आपके व्हाट्सएप संदेश से इस महफिल को हम आज सजाएंगे। आइए, अगर आप भी अपने मनपसंद गीत इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए इन नंबर पर 9474284000। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला मैसेज। ये मैसेज हमें भेजा है गड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। लक्ष्मण लोखांडे ने ये मैसेज हमें भेजा है। ये सुनना चाहते हैं आया सावन झूमो का एक गीत। इस गीत को वह अपने प्रियजनों के साथ सुनना चाहते हैं जिनके नाम हैं कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, सर्वपल्ली, रक्षिता और पूरे लोखंडे परिवार के साथ। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अब लेते हैं अगली फरमाइश। नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से हमें मैसेज भेजा है पीएस नहावकार, निर्मला, विशाल नहावकार और महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपन तांडे, आशीष मुरेकर ये सुनना चाहते हैं अनुपमा फिल्म का एक गीत। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं हमारी अगली और अंतिम फरमाइश की ओर। महबूबा फिल्म के एक खूबसूरत गीत की, जिसे सुनना चाहते हैं मोहम्मद यासीन अनजान। ये अपने प्रियजनों के साथ यह गीत सुनना चाहते हैं। उनके नाम हैं दादा बाबू, सैमाल नवाज, हुसैन नवाज, बाबू अहमद, मिर्फा नवाज। ये हैं दादा बाबू रोड, गिरिदीह, झारखंड से। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इसी अंतिम फरमाइश के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम संदेशे आते हैं अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका की गई है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30:09 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 30वीं तिथि तदानुसार 21 जुलाई 2026। इस समय सवेरे के 5:26 हुए हैं। आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: अपने सपनों को सच करने की शुरुआत आज और अभी से करें, क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते कई सपने अधूरे रह जाते हैं। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो हर सपना एक दिन हकीकत जरूर बनता है।
0: श्रोताओं, ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए समवेत स्वरों में मातृ वंदना।